0: रहे गुर बिन ज्ञान ना होए।
1: गुर बिन ज्ञान ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे। 88.6 पंजाबी FM प्लेंटी वैली विच तुहाडा स्वागत है। महीना जेठ का जून महीना दूजा दिन मंगलवार की शाम 6 to 8 प्लेंटी वैली FM दे विच असी तुहाडे नाल पंजाबी सेवा लैके हाजिर हाँ। तुहाडा अपना लोकल रेडियो स्टेशन तुसी मेरे नाल सांझ पा सकते हैं 03-9404-2111 ते। तुसी मैनू सुनेहा ला सकते हाँ, सुनेहा लाउन लई स्टूडियो का फोन नंबर 04-6-2-77-88-6 2-04-6-8-2-77-88-6 88.6 ते गल्लां चो गल लैके हाजिर हाँ बिक्की सिंह। अगले 2 घंटे तक असी हर वो गल करांगे जो साढ़े जहन विच है, गल्लां जो सानू टुंबदियां ने, गल्लां जो असी परिवार च बह के कर सकते हैं, गल्लां साडियां तुहाडियां, गल्लां सोहणे देश पंजाब दियां जिस नूं छड्ड असी परदेसी होए हां, गल्लां जो विचार मंगदियां ने, बदलदे हालात, कला साहित फिल्म, होर बहुत सारियां गल्लां जो साढ़े नाल आले दुआले वापरदियां ने ते सानू विचारियां जाणी चाहीदियां ने, गल्लां जो हल तराशन की गल करते हैं। पर पहला ना उस रब दा जिस दा जोर जवाब कोई ना, जिस दियां रहमतां बख्शिशां दा हिसाब भी कोई ना। वेखण सुनण वालियां दी खैर मंगदा, नाले करां अरदास सरपत भले नूं। नाल ही आस्ट्रेलिया दे मूल निवासी उन्हां दे अज दे पुराने सारे उन्हां पवित्र आत्मावां नूं, उन्हां दे पुराने बछिंदियां नूं सलाम कबूल करदे हां। ये धरती जिन्हां ने हजारां साल इहनूं सांभ के रख्या, प्लेंटी वैली दीआं खूबसूरत वादियां यानियन मांडा ते होर इलाकियां विच जिथे उन्हां दीआं पुराणियां इतिहासक थावां ने उन्हां नूं भी सलाम पेश करदे हां। अज दी शुरुआत गुरबाणी दे नाल, ये शब्द फिर अज दे मुख्य विषय वल आउंदे हां।